वीक तक, जब दो तो चार तक तो रेगुलर होएगी, उसके अलावा सिटी दे जिन्हों कहते हैं इंडस्ट्रियल या वक्रे वक्रे आस पास ने सिटीज के अंदर भी जरा वो टूर करवाए जाएंगे। सो ये जड़िया चीजा ने यह आने वाले दिनों देखिया जाएंगी, तो बारे कोई जानकारी लैनी है तुम सी आई आई एक्सपो या सी आई एक्सपो डॉट सी ए विजिट करके लै सकते हो। प्लस जे तुम इन्हे इस अलावा कोई होर जानकारी लैनी है तो मेरे नाल भी संपर्क कर सकते हो 403-400-0203 से। प्लस सबरंग रेडियो के प्रोग्राम जोड़े ने मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 बजे तो लैके 8 बजे तक, तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक ताकि सेवा च पेश करते हैं। पहला प्रोग्राम के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हो तो सानू 403-400-0203 से संपर्क कर सकते हो। सो प्रोग्राम के पंजाब बंद का की असर होया, यहोजी गलां पता भी चल रही ने, तो उसके अलावा कैनेडा के देखा भी स्टूडेंट जोड़े ने लगातार धरने से बैठे, हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर ने साफ ही कहता से तो मैं बारे बहुता कोई जानकारी नहीं, जो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा उदा ही हो रहा। तो प्रीमियर ने उसके चंगी तरह विस्तार में गलबात की भी, जे उन्होंने रिक्वायरमेंट हैगी इतने तो रह सकते हैं, बट सानू जे बहुत थोड़े लोगों की लड़ है तो 40,000 के करीब मैं पता लग्या भी इस तरह के लोग ने, बट 64 जॉब्स जड़ियाँ ने 64 रिक्वायरमेंट है उस तरीके की। सो इस तरह दड़िया चीजा ने सामने आदिया, तो मैं लगता भी ये थोड़ा बहुत कोई हल होना चाहिए इस मसले का, पर फिर भी लोग जोड़े ने अपने तरीके काम कर रहे हैं, खिंच रहे हैं, तो अगे भी अगे बढ़ता जा रहा है जरा। सो आप प्रोग्राम थोड़ी जी खबर के उत्ते नजर मार लें अज के, फिर प्रोग्राम तो बाद पता भी जरा ओवरऑल ट्रंप ने जिस तरीके रौला पाया सीगा, ते बाकी सारिया चीजा भी जड़ियां वो भी रिलेटेड काफी अगे बढ़िया जा रही। सो कुछ एक रिलेटेड खबर से गलत जड़िया ने यूएस ईरान वॉर दियां, ते अगे की हो रहा वो बारे भी थोड़ी जानकारी जी शेयर कर दें, फिर इस तो बाद आप अपन होर गलत जज के प्रोग्राम से शेयर करेंगे। मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7 तो 8 से संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक तुम ये प्रोग्राम सुनते हो। अज का प्रोग्राम 8 बजे तक चलेगा, पर एक कुछ एक खबरों तो बाद सुनते हैं बाकी गलत जी।

0: बीते 3 दशकों से ज्यादा वक्त में इसराइल से बाहर रहने वाले यहूदियों के लिए साल 2025 रहा सबसे बुरा, दिखाएंगे रिपोर्ट। फ्रांस और स्पेन समेत यूरोप के कई हिस्सों में अभी भी नहीं बुझी है जंगलों की आग। ग्रीस के क्रीट आइलैंड में भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका और ईरान फिर एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने कल रात भर ईरान पर भीषण हमले किए। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कई ठिकानों, मिलिट्री कमांड सेंटर्स और ड्रोन फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में कश्म में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। ईरान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में भी कई जगहों पर हमले किए गए हैं। पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी थी। ये चेतावनी थी पलटवार की, जब ईरान ने अमेरिकी बेसेस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जॉर्डन के शिप पर हमला किया था।
1: हम उन पर जोरदार हमले करेंगे, अब हमारी बारी है। ईरान को पता है कि ये होने वाला है, वो हमसे ऐसा नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन उसने कल रात हम पर गोलीबारी की थी।
0: वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा है। कुवैत ने कहा कि देश के उत्तरी हिस्से में ईरानी हवाई हमले की जद में एक इमारत आई, उसमें एक शख्स

0: की मौत हुई है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उसने पांच ईरानी मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। और आज मिस्र के दामियात पोर्ट पर दो जहाजों में आग लग गई। मिस्र के तेल मंत्रालय का कहना है कि यह आग ड्रोन हमले की वजह से लगी। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि ड्रोन सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी के फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन शिप एनर्गोस वेंटर से टकराया। इसके बाद लगी आग ग्रीस की एलएनजी टैंकर गैसलॉग सलेम तक फैल गई। मिस्र अमेरिका का एक अहम सहयोगी देश है, मगर अब तक ईरान ने उस पर सीधे कोई हमला नहीं किया है, ना ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान के सहयोगी यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इस हमले में शामिल होने से इनकार किया है। ईरान में पहली बार स्पेशल एक्सेस मिलने के बाद बीबीसी की एक टीम ने राजधानी तेहरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे तक का सफर किया है। इससे युद्ध के दौर से गुजर रहे इस देश की एक रेयर तस्वीर सामने आई है। बीबीसी की सीनियर इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट नवाल अल मकाफी को ईरान से रिपोर्टिंग की इजाजत इस शर्त पर दी गई है कि उनका कोई भी कॉन्टेंट बीबीसी पर्शियन सर्विस पर पब्लिश नहीं होगा। ऐसी पाबंदी ईरान में काम करने वाले सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस रिपोर्ट में कई जगह लोगों ने परेशान कर देने वाली बातें कही हैं।
1: हम ईरान के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर कर रहे हैं। ये 25 घंटे का सफर है। उत्तर से दक्षिण तक जाने वाला ये रेल कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम रीढ़ है। इस ट्रेन में ईरानी समाज के हर तबके के लोग सफर कर रहे हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी है।
2: हालात के मुताबिक खुद को ढालना हर ईरानी की फितरत होती है। ये बहुत मुश्किल था, बहुत डरावना था। हम परेशान थे, हम चिंता में थे, लेकिन फिर भी हम इन हालात में जीने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखते हुए भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखे हैं।
1: इस जंग से पहले हमने देखा कि पूरे ईरान में बड़ी संख्या में युवा और बाकी लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? वो इसका जवाब नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तनाव बहुत ज्यादा है। राजनीति पर बात करना लोगों को बेचैन कर देता है। जनवरी में कई सालों से लगे कड़े प्रतिबंधों, महंगाई और ईरान की सरकार के खिलाफ गुस्से ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार के खिलाफ बोलने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए हमने कुछ लोगों की पहचान छिपाकर उनकी बातें रिकॉर्ड की हैं।
3: Mostly we saw tears. ज्यादातर जगह हमने आंसू गैस देखी। फिर हमने साफ देखा कि पुलिस झुककर कलाश्निकोव से लोगों पर निशाना साध रही थी। हम ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गए कि वो कितनी आसानी से और बिना किसी हिचक के लोगों पर निशाना लगाकर गोली चला रहे थे।
1: इस तरह के खुले मुर्दा घरों में लाशों से भरे ट्रक पहुंच रहे थे। मरने वालों की कुल संख्या की कभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हजार लोग मारे गए और इससे भी ज्यादा लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। 28 फरवरी को कई हफ्तों की धमकियों के बाद अमेरिका और इसराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया।
4: अमेरिकी सेना ने एक बड़ा और लगातार चलने वाला अभियान शुरू किया है ताकि ये बेहद खतरनाक और कट्टर तानाशाही अमेरिका और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए खतरा ना बन सके।
1: ईरान के लिए राजनीतिक टकराव कोई नई बात नहीं है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच कई दशकों से तनाव बना हुआ है, लेकिन अब वो जंग के मैदान में है।
3: मेरी राय में अमेरिका एक तरह से ये जंग हार चुका है। वो अपना रास्ता भटक गया है। ये अभियान अब तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गया है। बात व्यापार बचाने की हो रही है। सब कुछ पैसों के बारे में है। लोगों की कोई अहमियत नहीं रह गई। अब लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा।
1: कई ईरानियों के लिए भविष्य पहले कभी इतना अनिश्चित नहीं लगा।
5: मैं ईरान से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरा वक्त, मेरे लक्ष्य, मेरे सपने और मेरी सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं, तो अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता।
6: मजबूरन।
1: और जब दोनों पक्ष इस जंग की कहानी अपने अपने तरीके से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता नवाल अल मगाफी की रिपोर्ट।
0: और जंग तेज होती दिखी है रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे पर भी। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमले किए हैं और ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर हमले कर सकता है। इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर 70 मिसाइल और करीब 300 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन

0: राजधानी कीव में एक शख्स की मौत हुई है इसमें, वहीं दो बच्चों समेत छह लोगों की निप्रो में उस वक्त मौत हुई जब उनका घर गिर गया क्योंकि इस पर मिसाइल से अटैक हुआ था। लवीव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जहां की रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिसाइल हमले की जद में आ गई, और यह हमला तब हुआ जब वॉशिंगटन में इसी हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की मिले थे। इस दौरान उन्होंने पैट्रियट मिसाइल के बनाने के लिए लाइसेंस देने की बात कही थी। इस बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन अटैक जारी रखा है। इस अटैक की जद में रूस का रिटेलर वाइल्ड बेरीज ग्रुप भी आया था। रूस के पेंजा रीजन के गवर्नर ने कहा कि इस वाइल्ड बेरीज के वेयर हाउस में भी आग लग गई थी। तुरंत 200 कर्मचारियों को उसमें से निकाला गया। वाइल्ड बेरीज ने कंफर्म किया है कि सरापूल में मौजूद उसके एक लॉजिस्टिक हब में ड्रोन हमले के बाद आग लगी थी। यह ड्रोन अटैक के बाद हुआ है। बुधवार को यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूस के कई हिस्सों में ऑयल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी लोगों पर इजरायली सेटलर्स के हमले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। यूएन के मुताबिक पिछले महीने औसतन हर दिन 6 ऐसे हमले हुए जिसमें लोग घायल हुए या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बीबीसी की संवाददाता लूसी विलियमसन वेस्ट बैंक के नाबलूस के दक्षिण में बसे अलमुग्यार गांव पहुंची जहां फलस्तीनियों पर लगातार सेटलर्स के हमले बढ़े हैं।
1: कब्जे वाले वेस्ट बैंक का फलस्तीनी गांव अलमुकिया, जहां शनिवार की सुबह इसराइली सेटलर्स अबू अलिया परिवार के घर में घुस गए और पूरे घर को घेर लिया। सड़क पर इसराइली सेना भी मौजूद है। गांव वाले रास्ता रोक रहे हैं और सेना की गाड़ियों से बचने के लिए भाग रहे हैं। अभी हमने गांव के निचले हिस्से में अबू अलिया परिवार के घर के पास गोली चलने की दो आवाजें सुनी हैं। घर के भीतर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कुछ युवा सेटलर्स डंडों से घर का मेन गेट तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसराइली सैनिक वहां पहुंचते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ पीछे हटने को कहते हैं। न तो उनसे पूछताछ की जाती है और न ही उनके डंडे जब्त किए जाते हैं, जबकि वो बार बार गेट पर हमला करते रहते हैं। फलस्तीनी गांव वालों का आरोप है कि ऐसे हमलों के दौरान इसराइली सैनिक अक्सर सेटलर्स का साथ देते हैं। एक और वीडियो में सेटलर्स बाड़ तोड़ते नजर आ रहे हैं और पास खड़े सैनिक बिना कुछ किए ये सब देखते रहते हैं। इसराइली सेना ने इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी है लेकिन कहा है कि संपत्ति को हुए नुकसान के सभी आरोपों की जांच की जा रही है।
2: सेना और सेटलर्स में कोई फर्क नहीं है, बस उनकी वर्दी हरे रंग की है।
1: आप कह रहे हैं कि सैनिक और सेटलर्स एक ही हैं?
2: हाँ, दोनों एक ही हैं।
1: सेटलर्स यहाँ कितनी बार आते हैं?
2: हर दिन आते हैं और सेना की गाड़ियों के साथ आते हैं।
1: हाल ही में वेस्ट बैंक में तैनात रहे एक इसराइली सैनिक ने भी कहा कि चरमपंथी सेटलर्स उन सैनिकों को अपना दुश्मन मानते हैं जो उनके हमलों का समर्थन नहीं करते।
3: वहाँ कुछ टीनेजर्स ऐसे थे जो हमें नफरत भरी निगाहों से देखते थे। एक ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा। साफ है कि ये सिर्फ कुछ कट्टरपंथी किशोरों की बात नहीं है। फलस्तीनियों के चेहरे पर तो मैंने सिर्फ डर देखा लेकिन वहाँ रहने वाले किसी यहूदी के चेहरे पर डर नहीं देखा।
1: अलमुग्यार में घटनास्थल तक पहुंचना भी आसान नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कुछ सैनिक सड़क पर आ जाते हैं और उनमें से एक हथियार तान देता है। इसराइली सेना का कहना है कि उसे उस दिन फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच झड़प की खबर मिली थी। सेना का दावा है कि बाद में कुछ नकाबपोश फलस्तीनियों ने सैनिकों को गुलेल से पत्थर मारे। एक दिन पहले हुए हमले की खबर पर हम एक पैरामेडिक से मिले जिनका कहना था कि इसराइली सैनिकों ने उसकी एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने से रोक दिया। इस आरोप पर इसराइली सेना ने बीबीसी के सवाल का जवाब नहीं दिया है।
4: उन्होंने हमें इंजन बंद करने को कहा और एम्बुलेंस की चाबियां ले ली। अगर वे रुकने को कहते हैं तो हालात चाहे जैसे हों हमें वहीं इंतजार करना पड़ता है।
1: ऐसा कितनी बार होता है?
4: लगभग हर दिन एम्बुलेंस के साथ हमें यही झेलना पड़ता है।
1: आप अलमुग्यार कितनी बार आते हैं?
4: लगभग हर शुक्रवार।
1: हमारे वहाँ से लौटने के एक हफ्ते बाद 17 साल की फुटबॉलर फादी हमदुल्ला अल नसान का जनाजा इसी गांव की गलियों से गुजरा। डॉक्टर्स के मुताबिक अबू अलिया परिवार के घर के पास हुई झड़प के दौरान उन्हें गोली का टुकड़ा लगा था। वेस्ट बैंक के कई फलस्तीनी गाँवों में अब ये वीकेंड पर होने वाली एक आम बात बन चुकी है।

0: बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट।
1: और ब्रिटेन में साल 2025 में यहूदी विरोधी घटनाएं बाकी देशों के मुकाबले काफी बढ़ी हैं। ये सामने आया है दुनिया के 7 सबसे बड़े यहूदी प्रवासी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स की नई रिपोर्ट में। ब्रिटेन उन देशों में है जहां यहूदियों की अच्छी खासी आबादी रहती है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लगभग 30 सालों से ज्यादा वक्त में इसराइल से बाहर रहने वाले यहूदियों के लिए साल 2025 काफी घातक रहा है। देखिए बीबीसी की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुडिथ वॉरेंस की रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय उन 15 लोगों की मौत का शोक जता रहा है जो दिसंबर में हनुक्का कॉन्सर्ट के दौरान बॉन्डाई बीच में तब मारे गए जब एक बंदूकधारी ने उन पर गोलियां चला दी। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में घातक हमले हुए थे। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हीटन पार्क में मौजूद यहूदियों के मंदिर पर यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन यौम किपुर के वक्त 2 लोगों की मौत हो गई थी। वैश्विक स्तर पर 2025 बीते 30 सालों में इसराइल से बाहर रहने वाले यहूदियों पर हुए हमलों के हिसाब से सबसे घातक रहा।
3: बदकिस्मती से हम ये तो जानते ही हैं कि यहूदी विरोधी भावना की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, लेकिन राजनीति में भी इसकी कोई सीमा नहीं है। सरकारों से हमारी यही अपील है कि एक्शन लेने के लिए अगली त्रासदी या फिर यहूदियों के खिलाफ आतंकी हमले का इंतजार ना करें। ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि संसद, कानून लागू करवाने वालों, टेक कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सबको अगले हमले को रोकने के प्रयासों और यहूदी जिंदगी को बचाने की मुहिम का हिस्सा बनना होगा।
2: पिछले साल ब्रिटेन में यहूदी विरोधी घटनाओं में रिकॉर्ड उछाल देखा गया। सब मिलाकर 3,700 जो 2024 की तुलना में 5% ज्यादा है। इसराइल से बाहर रहने वाले यहूदियों में से 90% उन 7 देशों में रहते हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में है। हालांकि बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं को ये देश जिन तरीकों से मैनेज कर रहे हैं वो अलग अलग है, जैसे शिक्षा को बेहतर करना, कानून सख्त करना। इन देशों के साझा अनुभव भी रहे हैं और साथ में सोशल मीडिया के रोल और AI को लेकर एक वैश्विक चिंता भी है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल टास्क फोर्स के साथ काम कर रही है। स्कूलों और कॉलेजों में यहूदी विरोधी भावना पर एक स्वतंत्र समीक्षा हुई है। उम्मीद है इसके नतीजे जल्दी सामने आएंगे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच पर हुए हमलों की वजह से नए गन लॉज बने और हेट स्पीच पर शिकंजा कसा गया। शूटिंग्स पर एक पब्लिक इंक्वायरी इस हफ्ते भी जारी रहेगी। बीबीसी संवाददाता जुडिथ मॉरिट्स की रिपोर्ट।
1: फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में जंगलों की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी, सूखे पेड़ पौधों और तेज हवाओं ने इस आग को और भड़का दिया है, जिसे बुझाने में टीमें लगातार जुटी हुई हैं। ग्रीस के क्रीट द्वीप पर जंगलों की आग बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है। आग गांवों और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स तक पहुंची है, जिसकी वजह से करीब 8,000 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। इस दौरान 3 फायर फाइटर्स की जान भी गई है और इनमें से 2 लोग पश्चिमी रेथिमोनो इलाके में आग की लपटों के बीच फंस गए थे। उधर फ्रांस में जानबूझकर आग लगाने के शक में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि दक्षिणी पश्चिमी इलाके बोर्डो के पास लगी आग रात भर में और आगे नहीं बढ़ी। वहीं स्पेन में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हालात को बेहद गंभीर बताया है। वह कम से कम 10 जगहों पर लगी आग लगातार फिक्र बढ़ा रही है। हालांकि मैड्रिड इलाके से एक राहत की खबर है, जहां करीब 24,000 लोगों को वापस अपने घर लौटने की इजाजत दी गई है। स्पेन में इस आग से प्रभावित स्थानीय लोगों को ने बताया कि हालात कितने गंभीर हैं।
4: हमें आर्थिक मदद जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मुसीबत को झेलना अब हमारे बस में नहीं है। न मेरे पास पैसे बचे हैं, न कोई कागजात और न ही घर का सामान। मेरा सब कुछ वहीं छूट गया।
5: हमें अपने रेस्टोरेंट, अपने गांव और यहाँ की हर चीज का डर सता रहा है। जो लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर गए हैं, खासकर हमारे बुजुर्ग, उनकी बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या कहें, बेबसी और घबराहट महसूस हो रही है।
1: और भले ही कईयों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, लेकिन प्राग चिड़ियाघर में रहने वाले इन 2 पोलर बेयर्स ग्रेगर और एल्यूट को जरूर राहत मिल रही है, जो गर्मी से बचने के लिए बर्फ के बीच खेलते और ठंडे पानी में समय बिताते नजर आए। प्राग में इन दिनों भीषण लू चल रही है, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और श्रीलंका के सबसे पवित्र और भव्य सांस्कृतिक त्योहारों में से एक एसाला

0: पेराहरा फेस्टिवल का कैंडी शहर में कुछ इस तरह समापन हुआ। मान्यता है कि यहाँ भगवान बुद्ध का एक पवित्र दांत सुरक्षित रखा गया है और उसी के सम्मान में ये आयोजन होता है। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्सपर्ट लिख सकते हैं, मेरा हैंडल है @bbcsarika। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए और चुनिए बीबीसी हिंदी।
1: बीबीसी कुछ खबर जी प्रोग्राम समा तुम पता बड़ी तेजी भजता जाता बढ़ता जाता। सो अज का प्रोग्राम 8 बजे तक चले गए तो गल्ला बात जड़िया ने अपना जारी रखांगे, प्लस नाले अपनी कुछ ना कुछ अपडेट जड़िया ने वो भी तुहानू दिंदे रहांगे। सो क्योंकि काफी दुनिया भर दिया अलग अलग तरीके दिया स्पैशली गर्मी दे नाल ध्यान च रख के देखिए ते किस तरीके नाल हर साल वैसे तो लगदी ही, पर इस बार दी जड़िया अग्गां ने या जिहड़े एनवायरमेंट का जिहड़ा खतरा है वह पहले के मुकाबले वधदा जांदा। सो इस बारी होर थोड़ा वध लग रहा है। एक छोटी जी ब्रेक लेनी पहला ब्रेक तो बाद फिर आप गलत इसे तरीके ने जारी रखते हैं।
2: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो। कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
2: छोटे परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
4: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: काठमांडू से कुछ ही किलोमीटर दूर रहने वाली ये लड़की 14 साल की है। करीबन एक साल पहले उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब एक युवक उसे अगवा करके अपने साथ बिहार में ले गया।
1: उसने पीछे से आया, ठीक है ना, वो पीछे से आया और ऐसे करके दाब दिया। फिर मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और मैं होश में ही नहीं थी ना, इसीलिए तो वो मुझे लेके चला गया। और मैं जब आँख मेरा खुला ना, तो आँख खोलने के बाद मैं सब देख रहे हो, तो मैंने बोला मैं कहाँ पर हूँ, और वो बोल रहा है तुम इंडिया पर हो।
0: रश्मि ने हिम्मत दिखाई और एक रात चुपके से अपहरणकर्ता का मोबाइल उठाया और अपने घर वालों को कॉल करके अपने बारे में सारी जानकारी दे दी।
1: जब वो लोग सो जाते थे तो मैं मम्मी से बात करती थी छुप छुप के। वो लोग, उस लोग का फोन था ना, तो मैंने एक बार छुप के देख लिया था उसका लॉक।

0: और वो जब सो जाते थे और मैं उठ के टॉयलेट पर जाके बात करती थी मम्मी से, तो बातचीत कभी कभी वो छुप छुप के करती थी। वो बोल रही थी कि मैं टॉयलेट में जाके बोल रही हूँ, छुप छुप के ऐसे बोली। मैंने बोला तुम ना डराओ, हम लोग है।
1: माँ और बेटी की इसी समझदारी की वजह से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकी। एक एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बच्ची को सुरक्षित घर लाया गया।
2: परिजन द्वारा 2 महीने बाद विक्टिम का पता चला कि विक्टिम एक बंद कमरे में है। हम लोग ने एक टीम बनाया पुलिस के साथ, एएचटीयू टीम के साथ, और जहाँ पर ट्रैफिकर का घर था वहाँ गए, वहाँ उस बच्ची को बंद कमरे से रिकवर कराए, ट्रैफिकर को पुलिस के साथ लेके आए।
1: भारत नेपाल सीमा एशिया में मानव तस्करी के सबसे बड़े रास्तों में से एक मानी जाती है।
3: नेपाल में और भारत में रोटी बेटी का संबंध है, लोगों का विदाउट पासपोर्ट आना जाना बहुत सारा लगा रहता है। इसी माध्यम में ना बहुत सारे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार होते रहते हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल इस सीमा के रास्ते कम से कम 15,000 से 20,000 लोगों की तस्करी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है।
4: बिटवीन इंडिया एंड नेपाल देयर आर नो ऑफिशियल एस्टिमेट्स।
5: भारत और नेपाल के बीच बच्चों और महिलाओं की तस्करी का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक अनुमानों के अनुसार ये संख्या एक साल में 10,000 से 1,00,000 के बीच हो सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तस्करी उत्पीड़न का एक तरीका है, और जब तक ये तय नहीं हो पाता कि पीड़ित का उत्पीड़न हुआ है या नहीं, तब तक हम उसे मानव तस्करी नहीं कह सकते।
1: संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मानव तस्करी के इस अवैध व्यापार का सालाना कारोबार लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर का है। भारत और नेपाल में अब कई संगठन इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा ऐसे ही एनजीओ को सामाजिक कार्यकर्ता भुवन रिभू एक मंच पर लेकर आए हैं। दोनों देशों के संगठन लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और सीमा के दोनों ओर अपना नेटवर्क बनाकर काम कर रही हैं।
6: अगर तुमको नेपाल ले गया, कुछ कर दिया, तो क्या करेगी? कौन बचाएगा तुमको? ना तुम मम्मी के घर में बता के आई है।
7: जो हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, ये हम लोग का नियंत्रण चलता है। मतलब ये नहीं है कि ये स्पेशल ड्राइव चल रहा है उसी में, ये नियंत्रण हम लोग महीने में चलाते आते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन से, और कोऑर्डिनेशन से काम करने पर सफलता भी मिलती है।
8: इंडिया का भी वैसा लड़की मिलेगा तो हम लोग इंडिया का संस्था या जागरण संस्था को हम लोग सुपुर्द करते, वो लोग भी नेपाल का लड़की मिलेगा वहाँ रेलवे से बस पार से मिलेगा तो वो लोग हम लोग को सुपुर्द करते, दोनों हम लोग मिलकर काम करते।
1: सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, रेलवे पुलिस और एनजीओ नियमित रूप से साझा अभियान चलाते हैं।
9: नहीं जा सकते सीधे ट्रेन पर, को घर जाओ, नहीं तो भेज देंगे।
1: नेपाल के विराटनगर और भारत के जोगबनी बॉर्डर पर हमने ऐसे ही एक ऑपरेशन को देखा।
10: वही मालूम होता है ना, कोई कोई लुगिच भी बॉर्डर पास भी कर जाते हैं, बाद में पता चलता है हम लोग, उसके बाद हम उधर से कोऑपरेट करते हैं, वो लोग हाँ यहाँ पर है आइए लेके जाइए बोलते हैं, हम जाकर समन्वय करके हम लेते हैं।
1: नेपाल के कई एनजीओ में आज वो महिलाएं भी काम कर रही हैं जो कभी खुद मानव तस्करी का शिकार बनी थी। काठमांडू की छोरी संस्था में काम करने वाली ये महिला भी उन्हीं में से एक है। 16 साल की उम्र में उन्हें नेपाल से भारत, फिर पश्चिम एशिया होते हुए अफ्रीका के एक डांस बार में बेच दिया गया था।
11: हम लोग टांजानिया पहुंच के एक दिन रुके, अगले दिन से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हुआ और क्या बोलते ट्रायल ले रहा था। 10 दिन हमको वहाँ पे रख के ट्रायल ले लिया, फिर सब लड़कियों को अलग अलग कर दिया। फिर टांजानिया से होते हुए हमको लेके गया मुंबासा, फिर वहाँ पे हम काम किए 3 महीने, तो पैसा भी नहीं दिया, बस काम करवाया और बोला यहाँ पे जेल में डाल देंगे तो तुमको किसी को पता नहीं चलेगा।

0: अरे जिंदरा मैडम आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है।
1: ओ तू सारा टब्बर कट्ठा करी फिरदा।
2: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने कट्ठा करके दिता है। JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004।
3: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी। इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
4: The time is 9 p.m.
5: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैंने यह दसो कि आतंकवाद इन्हें खत्म कर देता सी। तुम्हें तो याद होगा जिस वेले इन्होंने 370 हटाना सी उस वेले अमरनाथ यात्रा चल रही सी उस वे टूरिस्ट से कश्मीर विच ते इन्हें झूठ बोलिया कि जनाब एक पिटा पिटा गन कोई गन है जो मिली है जी उठे अमरनाथ यात्रा पे तो अमरनाथ यात्रा बंद कर दो जी सारे टूरिस्ट को निकाल दो। असली मकसद ये सी कि 370 खत्म करना है और झूठ बना के कि जनाब खतरा है वो सब किया। तो जनाब ए झूठा पे झूठ झूठा पे झूठ सच तो है ही किथे ही नहीं।
1: तो स्टेटहुड दा मसला हुण ए भी है कि मुख्यमंत्री कोई पावर नहीं है जा उम्र
0: सारे पावर जो है ना जी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर दे कोल है। यानी हाल ये देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है सिक्योरिटी सारा कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। चीफ में से वो कभी बुलाया नहीं जाता जब ये सिक्योरिटी की मीटिंगें कर दें। एक कड़ी हुकूमत है हैरान हूं मैं कि लोगों ने चुनी हुई सरकार और सिक्योरिटी उसके हाथ में नहीं है। आईएएस अफसर उसके हाथ में नहीं है। आईपीएस अफसर उसके हाथ में नहीं है। सारा कुछ गवर्नर साहब अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने राजभवन से करते हैं जिन्होंने आज लोकभवन कह दिए। अफसोस है मैं अफसोस इस बात का भी है कि खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के और वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री का काम की है और किस तरह करना है।
1: मैं इस करके पूछ रहा सी कांग्रेस ते बीजेपी दे फर्क बारे क्योंकि एक बार इंदिरा गांधी ने तुहानू डिसमिस कीता सीगा एज चीफ मिनिस्टर
0: एक बार
1: वो भी एक दौर सी एक बार नहीं कई बार पर एक दौर आ जड़ा 84 च
0: मैं कहना जी वो तो जमाना ही कुछ और सी। उस वेले तो मेरे पर ये लगाया गया जी चार्ज की ये तो खालिस्तानी है ये तो पाकिस्तानी है तो अमेरिकन एजेंट है जबकि मैं कभी एजेंट नहीं था। मैं जब पंजाब गया सी उस वेले इन्होंने अकाली दल और दे नाल इंदिरा गांधी दे बातचीत चल रही सी और मेरे ख्याल से वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार साहब वो आए थे उस वक्त वो
1: स्वर्ण सिंह
0: जी वो बात कर रहे थे अकालियों से मगर जो अकालियों से माहिदा किया था और जो उन्होंने बयान देना था पार्लियामेंट विच वो बिल्कुल ही अलग थी जो फैसला हुआ सी उसे बिल्कुल ही खिलाफ था। तो जब मैं उत्थे था गया था तो मैंने उन्होंने पूछा तुम इंदिरा गांधी ने तरफ से मैंने कहा मैं नहीं आया इंदिरा गांधी की तरफ से मैं तो इतने सलाम करने आया। तो उठे बिंद्रावाला भी थे ऊपर बिंद्रावाला ने मैंने बुलाया तो जब बिंद्रावाला ने मैंने बुलाया मैंने उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं आ सकती मैं फिर मैं नहीं आ सकता तो अगर सिक्योरिटी नहीं आएगी अगर कुछ हो गया तो उनके तो बेचारों का खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो वो भी आए तो मुझसे बात की उन्होंने तो उन्होंने क्या मैनू फरूख साहब तुम्हें एक गल याद होनी चाहिए क्या साडा इन्होंने नहीं चलेगा। मैं कहा नहीं मेरे वालिद ने मैंने कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई हमने चलना है इस पे। फिर मैं इंदिरा गांधी के पास आया यहां उसी वक्त मैंने कोई रास्ता निकालना चाहिए इंदिरा वाला से बात करने की नहीं तो हालत खत्म हो जाएगी। अगर पंजाब जल गया तो हम किधर जाएंगे ना हम चीन जा सकते हैं ना हम पाकिस्तान जा सकते हैं हमारे तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर कोशिश की थी कि गलबात हो उस दिन महाराजा पटियाला अमृतसर सिंह जी भी उस चीज से थे राजीव गांधी से मगर फिर अपने मेहरबान जितने हैं यहाँ पे उन्होंने ये बात चलने नहीं दी। फिर आप जानते हो फिर क्या हुआ।
1: तुसी अपनी किताब दे अंदर माई डिसमिसल च लिखिया गा कि ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ AESF ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ
0: ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ
1: ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
0: ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ

0: और भारतीय हैं, कभी उन्होंने भारत के खिलाफ कोई कभी कुछ नहीं किया, बल्कि आज भी देखिए जब सानू इस वेले राज्यसभा की सीटें आई, हमने पहली दफा 47 के बाद सिख एमपी बनाया, हमने कहा इनको भी हक है ये भी अपनी बात कर सके, अपने मसले सुना सके, अपनी हालत ठीक कर सके।
1: जिहड़ा मैं कह रहा सीगा कि पॉलिसी जिहड़ी इंडियन स्टेट दी पॉलिसी है कि कांग्रेस ते बीजेपी उहदे च फर्क पाउंदी है कोई जदों कश्मीर दा क्वेश्चन आउंदा जां ओह सेम रहिंदी है क्योंकि इंदिरा गांधी ने तुहानूं वी तां डिस्कस कीता ना 84 च तुसीं
0: 83 ते छड्डो, मैं कहिंदा जे 370 है इस नूं खोखला बनाया पहले कांग्रेस ने, इसमें बहुत कुछ खत्म हो गया था, जो भी कर सके इन्हें, जिस भी मुख्यमंत्री को बनाया वहां पे शेख साहब को गिरफ्तार करने के बाद, वो बख्शी साहब हो, वो सादिक साहब हो, वो मीर कासिम साहब हो, इन सब ने 370 को आहिस्ता आहिस्ता अलग कर दिया। तो कांग्रेस तो जिम्मेवार थी पहले से,
1: क्योंकि राहुल गांधी हुण बड़ी गल एक्सटेंड करदे ने, इत्थों तक यूनियन ऑफ स्टेट ते आ जांदे ने, कहिंदे इन्ना ज्यादा अल्ट्रा फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया च, तुहानूं पता ना पिछे वो बाहर दी यूनिवर्सिटी च बोल के आया, पर इहदी शुरुआत ते कांग्रेस ने कीती सी, भुगत भोगी हुण कांग्रेस खुद बनी हुई है।
0: मैं कहता हूं जी कई गलतियां कांग्रेस दी भी है, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं है। पहले इलेक्शन कमीशन ये टोटली ऑटोनोमस होना चाहिए, इसमें ऐसे लोग होने चाहिए थे जिन पे सारे वतन को भरोसा हो, वो नहीं कर सके। फिर आज आप देखते हैं जुडिशरी में क्या हालत है, इसको भी ठीक किया जा सकता था उस वक्त, ऐसे जजेस को और ऐसे कानून को ठीक करने के लिए काबिल लोग आए, ईमानदार लोग आए, ये नहीं कि वो ईमानदार नहीं है, कि वो आए जिनको लोगों का इंटरेस्ट हो, लोगों के पास आखिरी कदम जो है वो कोर्ट है, अगर कोर्ट में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएंगे, और सबसे बड़ी जगह तो वही है, यहां भी फेल हो गए। कई चीजें हैं, मगर वक्त है ठीक करने का, ये नहीं कि ठीक नहीं हो सकता,
1: क्योंकि कांग्रेस ने जो सिखा नाल कीता, सिखा नूं तां सब तों वड्डा इतराज कांग्रेस ते रहा, जिहड़े कम्युनलिज्म दा हुण रौला पाउंदे ने सिखा नूं लगा, दिल्ली च की होया तुहानूं पता, दिल्ली च
0: मैं इत्थे सी उस वेले, इस वेले वो कतलेआम हुआ इत्थे, मैं भुल नहीं सकदा, मैनूं तुहानूं एक गल दसां, मैनूं गुजराल साहब ने फोन किया भोगल विच, हमारे जनरल जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया,
1: जनरल जे जे सिंह अरोड़ा,
0: अरोड़ा साहब वो वहां फंसे हुए थे, तो मुझे कहा फारूक आप आओ, जनरल को निकालना है वहां से, वहां हालत बहुत खराब है। तो मैंने गुजारिश की, मैंने कहा जनरल साहब से कहिएगा जरा यूनिफॉर्म भी लगाए, यूनिफॉर्म लगा के निकले। तो मैंने पहले गुजराल साहब को उठाया, फिर इनके घर गया, वहां बेचारे चार सिपाही उनके पास थे और जल रहा था हर तरफ से, घर जल रहे थे, सब कुछ जल रहा था। उस हालत में मैंने देखा जब जनरल अरोड़ा घर से निकले, वो सूट लगाए हुए थे, जब गाड़ी में बैठे मैंने कहा जनाब मैं आपको यूनिफॉर्म लगानी थी, कहा फारूक अब उस पर दाग लग गया है, अब मैं यूनिफॉर्म नहीं लगा सकता। मैंने कहा जाना है, कहा मुझे हेडक्वार्टर पे ले चलिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या दो दिन लगे मेरठ से फौज को यहां लाने के लिए, गुजराल साहब को पहले घर में छोड़ा, इनको वहां ले गया, फिर मैंने कहा जनाब मैं आपका इंतजार करूं, कहा नहीं अब मैं खुद पहुंचूंगा। मैंने उस वक्त फिर पंजाबी भाग गया अपने लीडरों के साथ, क्या हाल देखा मैं बयान नहीं करना चाहता, वो दर्दनाक चीज मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मैं वो

0: वो जख्म फिर से ताजा नहीं करना चाहता। क्या देखा मैंने, वो मैं हैरान हो गया कि इंसान हैवान भी बन सकता है। कहां गई वो इंसानियत उस वक्त। पहली फौज जो हमारे यहां आई, जब कबाली आए थे, पाकिस्तानी फौज आई थी, वो पटियाला की रेजिमेंट थी। मैं छोटा लड़का था, मैं बाप के पीछे छुप गया जब मैंने इनको देखा, 6 फुटर और इनकी पगड़ियों पे वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं इसको, वो हलोहे का वो लगा हुआ था वो सर्कल। मैं क्या बताऊं आपको, उनमें से मुश्किल से कुछ लोग वापस गए होंगे जिंदा। उनके खून ने हमें आजादी दिलाई, उन दरिंदों से हमें बचाया। मैं कभी भूल नहीं सकता, जब तक ये है कभी भूल नहीं सकता उनकी कुर्बानी। और उन पे ये हमला एक आदमी ने किया था, मगर सारी कौम पे आपने हमला किया। आपने एक ब्रिगेडियर को यूनिफॉर्म से निकाल के निजामुद्दीन स्टेशन से उसको मार डाला। क्या उस वक्त नहीं देखा ये वो सिपाही है जिसने हमारी धरती को बचाया है? नहीं देखा। उस वक्त हम लोग यही नारा होते थे, खून का बदला खून से। अरे भैया क्या खून से, कसूर एक का, और तुम सारी कौम को मारने के लिए तैयार हो गए? कहां गई तुम्हारी इंसानियत? आज भी वही हालत है, आज भी जहां इनको मिलता है मुसलमान हो वो आतंकवादी हुआ। अरे कब सीखोगे, कब जानोगे? जब झंगड़ की लड़ाई हुई नौशहरा में, वहां जो ब्रिगेडियर था, तब फौज हिंदुस्तान की नहीं थी, तब ये रियासतों की फौज थी। और रियासतों को फौज को उस वक्त इकट्ठे करना मुश्किल था। उस वक्त उस ब्रिगेडियर ने, नहीं तो फौज के जनरल वगैरह पीछे होते हैं, फौज आगे लड़ती है, ये आगे लड़ रहा था। इसके रिश्तेदार पार थे, वो वहां से लड़ रहे थे, मगर वो भारतीय था, उसने रिश्ता नहीं देखा। उसने कहा नहीं, ये मेरा वतन है, मैंने मेरे वतन को बचाना है, और कुर्बानी दी वहां। आज भी वो बंकर वहां पे है जहां उसने शहादत दी। उसका नाम ब्रिगेडियर उस्मान था। उसके रिश्तेदार हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब भी है। अरे किनकी कुर्बानियों को तो भूल जाओगे?
1: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ, इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक, सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां 2 पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल

0: ਜੀ ਫੋਨ 403-936-7077 ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ $7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ $7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ
1: ये जो प्रॉब्लम है ये असल में है कहाँ क्या ये जब देश बटा टू नेशन थ्योरी की चर्चा होती है इस देश में तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कहा गया था कि वो मुल्क बन रहा है जो वो इस्लामिस्ट मुल्क बन रहा है और ये कहा नहीं गया इसको कहा सेकुलर गया पर ये सेकुलर शुरू से ही नहीं था या था अगर था तो फिर ये प्रॉब्लमें क्यों आ रही हैं जो भी आ रही हैं
2: अफसोस इस बात का है पहले अंग्रेज इसके जिम्मेवार हैं अंग्रेजों ने चाहा कि हिंदुस्तान कभी भी आबाद रहे आगे चले और इनका मुकाबला करे तो उन्होंने क्या किया एक तरफ से कायद आजम जिन्ना को सलामत रखा दूसरी तरफ से संघ को इनके अपने साथ रखा दोनों ने ये किया वायदा ये तो पाकिस्तान मांगो जो मुसलमानों का देश होगा और हम लोग हिंदू देश मांगेंगे ये इनकी पहले से ही थी इनकी अंग्रेजों से मिली हुई बात थी और दोनों अंग्रेजों के चमचे थे और फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने जनाब जब देश आजाद हुआ उन्होंने तो पाकिस्तान बना लिया जिन्ना साहब ने जरूर वहां तकरीर की कि यह सेकुलर रहेगा मगर जिन्ना साहब के मरने के बाद उसका हाल आप देखते हैं यहां क्या हुआ यहां महात्मा गांधी खड़ा रहा महात्मा गांधी ने कहा नहीं और अंबेडकर ने जो आईन बनाया वो सबके लिए बनाया कोई फर्क नहीं रखा हिंदू में मुसलमान में सिख में ईसाई में कोई भी जो धर्म है कोई फर्क नहीं रखा सबके लिए रखा मगर आहिस्ता आहिस्ता ये देश उससे निकल गया और इन्होंने कुर्सी के लिए धर्मों की लड़ाई शुरू की फिर इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है उसका नतीजा आप देखते हैं आज भारत में
1: मैं ही कह रहा कि जो आप नहरू नू कहने नहरू तो अथीस्ट कहते लोग कि नहरू तो अथीस्ट सीगा अथीस्ट सी नहरू नू लोग कहते हैं कि नहरू कोई ज्यादा परमात्मा च विश्वास नहीं रखता सीगा और नहरू सैकुलरिज्म भी कहा जाता उन्होंने भी बहुत बड़ा सैकुलरिज्म लेके आए
2: नहरू का तो ये था ना कि वो समझता था कि भारत जो है वो सबका है
1: मैं सवाल पूरा कर दूं भी पढ़िया होया बाहरों पढ़िया बाहर दी यूनिवर्सिटियां वेस्ट दा थॉट आ उहदे कोले पर उहदे क्रिटिक कहंदे आ उहने सारी उम्र अपने नां दे अगों पंडित नहीं उतारिया पंडित जवाहर लाल नहरू जी यही मैसेज सीगा इत्थी जड़ां पईआं सी सारी चीज दीआं जड़ां बाद चो इंदिरा गांधी आके उहदी कलमीनेशन करदे ने सिखां दे मामले च तां होया ए सिखां ने तां हिंदू तां बहुत पहलां देख लिया 84 च ही देख लिया मुसलमानां ने बाद चो देखिया
2: नहरू जो सी ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ ਅਗਰ ਹਮ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ
1: ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਉਸਕੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ मगर अफसोस इस बात का है कि 17 साल हुकूमत करने के बाद भी वो चीज नहीं कर सका जो जरूरी था जरूरी यह था कि उन चीजों को मजबूत करे कि धर्मों की लड़ाई ना हो इलेक्शन कमीशन ठीक करता हमारे कोर्स की तरफ देखता कई चीजें हैं इनकी तरफ उसने जरूर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की यानी यहां पे तो सुई तक बाहर से आती थी आईटीज और

0: जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने, ये जो अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं ये भी उसी के वक्त से है। एटॉमिक पावर बना ये भी उसी वक्त से है।
1: बाखरा डैम
0: यानी आज जो वो उस वक्त याद है मुझे जब बाखरा डैम को उन्हें इनॉग्रेट किया, कहा ये है कल के मंदिर, ये था उसकी सोच। मगर अफसोस वो आगे चल नहीं सके,
2: क्योंकि उस जिहड़ी राम मंदिर दा मसला भी आ उह ते कांग्रेस दे दौर च ही आउंदा ना। पहली वार फर्स्ट टाइम जिहड़ा राम लल्ला दा उत्थे विराजमान हुंदे आ उह ते राजीव गांधी दे दौर च पहली वार दरवाजे खुलदे आ, तुहानूं पता।
0: ए तो मामला जो है ना जी, ये अंग्रेजा दे वक्त से थे, ये आज ही नहीं था, उसी वक्त से नहीं था, ये उस वक्त का।
2: मैं कह रहा कि कांग्रेस भी तो,
0: मगर कांग्रेस उसमें जिम्मेदार थी, खासकर अरुण नेहरू साहब वगैरह जिन्होंने राजीव को कहा इसको खोलना चाहिए। और वहां पे मस्जिद थी और मस्जिद में रातों रात वहां पे राम की मूर्ति रखी गई, ये तो अजीब सूरत है। अब फिर देखिए ना, ये तो हो गया, खुल गया, मगर फिर देखिए जो यात्रा शुरू की अडवाणी जी ने, ये यात्रा शुरू,
2: रथ यात्रा
0: शुरू की। अच्छा, फिर जब इसकी इस पे आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब इसको देखा, वहां कोई मंदिर का कोई भी सबूत आज तक नहीं है, आज तक कोई सबूत नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब वर्डिक्ट दिया, कहा कि हम क्योंकि लोगों की इच्छा है, इसे हम लोगों की इच्छा को पूरा करने के जा रहे हैं, ये नहीं कि वहां पे कोई एविडेंस थी, कुछ नहीं था, किया उस वक्त ऐसी चीजें की गई।
2: ये जो दो मसले ने, एक एक ही सारे धर्मां दा सत्कार दी आपां कॉन्स्टिट्यूशन जो कहिंदा गा, कॉन्स्टिट्यूशन च जो आगा, दूसरा है कि सारियां स्टेटां दा जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर दा मसला गा। एक दौर च लड़ाई यह चलदी सी कि राइट ज्यादा मिलण, जिवें तुहाडे कोल धारा 376 सी कि स्टेटां नूं ज्यादा राइट। प्रकाश सिंह बादल भी लड़दे रहे, साउथ च भी लोक लड़दे रहे, अलग अलग हां लड़ाईयां होईयां पूरे इंडिया च। कि लड़ाई हुण आके इत्थे खड़ गई कि तुसीं आपदी स्टेटहुड लैण लई लड़ रहे होगे, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਵੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਵੀ?
0: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। मगर जो हक हमारा है, जब हम लोग ने वतन के साथ शमूलियत की, उस वक्त हमें ये 370 मिला कि हम अपना जो कल्चर है, अपनी जो हालात हैं, उनको अपने तरीके से चलाएंगे, ये उस वक्त फैसला किया गया था। 35A भी उसी वक्त आया कि नौकरियां जो हैं वो रियासत के लोगों को मिलेंगी। ये महाराज साहब ने, महाराज हरि सिंह जी ने 1927 में कानून बनाया था कि कोई भी यहां पे नौकरी नहीं ले सकता, यहां गरीब लोग हैं और पंजाब और सारा अमीर इलाका है, ये हमारे इलाके को खा जाएंगे और हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। उसी को बचाने के लिए आज लद्दाखी भी लड़ रहे हैं। लद्दाखी क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? इसीलिए कि भाई हमारा जो तरीका जिंदगी का है, हमारी जबान है, हमारा तरीका है, हम बौद्ध हैं, हम इसको रखना चाहते हैं, भारत से अलग नहीं होना चाहते। ये जो एक शोर कर रहे हैं कि भारत से अलग होना चाहते हैं कश्मीरी, और ये गलत प्रोपेगेंडा है, सिर्फ लोगों में एक जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो हमारा हक था उसको तुम कहो छीन रहे हो, हम तुमसे तो कुछ और मांग नहीं रहे हैं। क्या हमें हक नहीं है भारत ही में रहकर यह करने का? फिर झगड़ा कहां है?

FM Calgary पे मैं हूँ शान. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड फ्राइडे इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. थर्टी डिग्रीज है राइट नाउ इन एंड अराउंड कैलगरी. देसी जबान में अगर हम इंडिया पाकिस्तान में जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो या 42 डिग्री हो तो वो नॉर्मल कैलगरी का 30 है. तो जब हम ये कहें कि 30 डिग्रीज इन एंड अराउंड कैलगरी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40, जो हम बैक होम के यूज टू हैं. इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 वीक्स, बारिश नहीं हुई कंटिन्यूसली, ब्लू स्काइज, अच्छी गर्मी है. कैंपिंग करें, बारबेक्यू करें, पहाड़ों पे, लेक्स पे, ड्राइव पे जाएं, बैकयार्ड एंजॉय करें, कुछ भी करें पर करें जरूर, बिकॉज विंटर इज नॉट फार अवे. प्रोग्राम संगीत स्टूडियो, योर वीकली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड हिट देसी म्यूजिक, बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो. एक किताब पढ़ रहा था, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मेरी याद रह गई, या मैंने कोशिश करके याद रखी. कहते हैं कि जो नेचर है ना, जो कुदरत है, आप अगर मजहबी हैं तो जो खुदा है, रब है, जो वो करता है, उसका जो पूरा सिस्टम है, निज़ाम है कायनात का, यानी नेचर जो है उसका कोई मजहब नहीं होता. शहद जितना क्रिश्चियन के लिए मीठा होता है

मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए या सिख के लिए होता है। यानी शहद का कोई मजहब नहीं, नेचर का कोई मजहब नहीं। खेत में जाके, खलियान में जाके कोई इंसान, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, या एथियस्ट है, या एग्नोस्टिक है, यानी उसका कोई बिलीव किसी तरह का है ही नहीं, इन सारों में से जो भी जाके टाइमली बीज डालेगा खेत के अंदर, पानी देगा सीजन के हिसाब से, टाइम से लगा देगा, पौधा उगेगा, फल फूल लगेंगे, अनाज होगा। कुदरत को इस बात से गरज ही नहीं होती कि आप कितने मुत्तकी, पारसा, ग्रेट, वंडरफुल, नेक, बद, या कौन सा आपका मजहब है। नेचर आपसे सिर्फ एक चीज की एक्सपेक्टेशन करती है आपकी हर मुराद पूरी करने के लिए, वो है डिसिप्लिन। जब सीजन हो आपने उठना है, काम करना है, नेचर आपको 100% उसका रिजल्ट देगी। है ना मजे की बात। कुदरत का कोई मजहब नहीं होता। शहद जितना ईसाई के लिए मीठा होता है, उतना ही मुसलमान के लिए, उतना ही हिंदू के लिए, उतना ही सिख के लिए। शहद का कोई मजहब नहीं होता। प्रोग्राम संगीत स्टूडियो, आज के प्रोग्राम की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। गाने थोड़े से पुराने, बहुत पुराने नहीं, 90s के गाने आज के प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। दिल क्या क्या करे साहब,

0: एक लिसनर की कॉल आई तो कहते हैं गाने याद होते हैं जब सुने तो पता चलता है कि ये गाना मुझे कितना पसंद है। और ये जो गाना था ये भी ऐसा ही था कि बहुत जमाने से भूला हुआ था लेकिन आज फिर याद आ गया सुन के।
1: Ladies and gentlemen, if you have a request, please have your money ready and pull forward to the second window.
2: We're not being paid for our labor, but if you keep on listening, we might.
3: Let us carry on because, you know, many of my viewers are very excited.
4: If they can see the television.
3: That, no, it's a radio.
4: Oh, it's a radio.
3: Right. But, you know.
4: If they told me before, it's just a radio, I'm not going to show up.
5: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
6: की होया
5: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन
6: ओहो रह गए ना फेर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
7: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
8: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 4039036757
7: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ

issues par investigative reports, cricket, weather and news of the day. Aaye, suniye, enjoy kijiye. Thank you for listening. Thank you for listening. Welcome back, 94.7 FM पर आप सुन रहे हैं संगीत स्टूडियो. मैं हूं शान. हर फ्राइडे को मेरा आपके साथ साथ रहता है और साथ के रहता है बेसिकली कुछ भी मन में आए. ऑफ द रिकॉर्ड किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि एक जमाना होता था चार घंटे के प्रोग्राम होते थे, जैसे स्पोर्ट्स पे, जैसे फैमिली पे, बिजनेस पे, पॉलिटिक्स पे, इंटरव्यूज, चीजें आहिस्ता आहिस्ता चार से दो घंटे, दो से एक घंटा, एक से आधा घंटा, दस मिनट, और अब ये रील्स और शॉर्ट्स और पता नहीं क्या क्या होता चला जा रहा है. अब एक टाइम आएगा कि जैसे ये जो कंसंट्रेटेड जूस नहीं होता, यानी जूस में से पानी का वाटर कंटेंट निकाल देते हैं और थोड़ा सा एक चम्मच टैंक जिसे आप कहते हैं उसे फिर एक जग में डालते हैं तो फिर उससे आपका जो ऑरेंज का जूस बन जाता है. तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो न्यूज या बिजनेस रिलेटेड चीजें, वो अब छोटी होती होती होती होती अब एक आध लाइन में लिटरी रह गई. ये तो खैर ऑन द साइड पे बात थी. रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं किसी बहुत ही सक्सेसफुल आदमी का. तो आदमी सक्सेसफुल हो या ना हो, कई बार बात बहुत मजे की करते हैं. कहते हैं कि अगर आपने ड्रग्स इंसान को कैसे तबाह करती हैं और ड्रग्स से कैसे इंसान होमलेस हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, रिश्ते छूट जाते हैं, हेल्थ खत्म हो जाती है, ये सबसे ज्यादा आपको पता है कौन बता सकता है? वो नहीं जिसने कभी ड्रग्स नहीं ली, डॉक्टर भी नहीं. सबसे ज्यादा आपको ये वो बता सकता है जो ड्रग्स लेता रहा हो, जिसने जिंदगी तबाह की हो, जिसने बैंकरप्सी की हो, जिसने रिश्ते खोए हो, और फिर वो शख्स बाउंस बैक करके एक क्लीन, एक सोबर लाइफ गुजार रहा हो. उससे बेहतर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ड्रग्स के कॉन्सिक्वेंसेस. इसी तरह से बाकी चीजों में जो बिजनेस में बार बार फेल हुआ है, उससे ज्यादा अच्छी टिप्स आपको कोई नहीं दे सकता. ये अलग बात है कि सक्सेसफुल लोगों के पास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बट दोज हु फेल्ड एंड स्टूड अप और अपने जिंदगी में आगे बढ़े, उनके पास बहुत ही छोटी और खूबसूरत बातें होती हैं. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. इसी इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था कि जो वॉरेन बफे, अमेरिका के बुजुर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, 90 के आसपास हैं, इस वक्त बिलियनर हैं वॉरेन बफे, और बिल गेट्स, और बिल गेट्स के फादर, उन्हें सीनियर गेट्स कहते हैं. अब ये तीनों साहब किसी जगह किसी रेस्टोरेंट में बैठे ब्रंच कर रहे थे, और उस आम सा रेस्टोरेंट था. तो वहां पर कोई साहब, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया बिल गेट्स है, फिर वॉरेन बफे है. तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े ग्रेट लोग एक टेबल पर बैठे कर रहे हैं. तो उन्होंने आके इंटरप्शन किया, उन्होंने कहा कि माफी चाहता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप तीनों बहुत ही आइकॉनिक बिजनेसमैन हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं. मैं अगर आप क्विकली आपसे एक एडवाइस पूछूं, कई बार होता है ना लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, कई बार होते हैं कि यार कोई टिप बता दो. तो अगर आपसे कोई एक एडवाइस मैं आपसे लूं तीनों से, तो वो कौन सी होगी? ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली तीनों ने कहा डिसिप्लिन. अब ये जो साहब इंटरव्यू दे रहे थे, ये वहां पर मौजूद थे, इन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया. वो कहते हैं कि वो स्टोरी मुझे इतनी डीप लगी कि मैंने उसे नोट कर लिया जो मैं अपनी बुक्स के लिए कंटेंट जमा कर रहा था, तो बाद में मैंने उसी बुक में लिखा. तो उन्हें तीनों ने ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली कहा कि डिसिप्लिन. अच्छा, डिसिप्लिन हम कभी कभी इसको अंडर वैल्यू करते हैं. कहा यह जाता है कि डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस, मोटिवेशन नेवर कैन. यानी जितनी मर्जी मोटिवेशन की किताबें पढ़ लें, स्पीचेस सुन लें आप, लेकिन अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं

0: तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. यू नो दोस पीपल जो जेन्युइनली वेट लॉस करना चाहते हैं और उनके पास हर तरह की किताब, हर तरह की कैसेट, हर तरह का इंटरव्यू और हर तरह का मसाला होता है, लेकिन वेट कम नहीं होता. नॉलेज की कमी भी नहीं है, मोटिवेशन की कमी भी नहीं, माफी चाहता हूं, डिसिप्लिन नहीं है. यानी एक दिन सोचा कि वेट कम करना है और खाना, डाइट, आगे पीछे एक्सरसाइज बनाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते कल कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, रात को कर लूंगा, एंड देन उसके बाद फिर खत्म. सो जो डिसिप्लिन है ना लाइफ का, कि स्क्रोल करते करते टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कब मुझे रुकना है. एट फॉर एग्जाम्पल 10:30 पे मैं बेड पे चला गया और मैंने ये सोचा कि 15 मिनट है मेरे पास नींद का इंतजार करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, तो एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद बंद करें और सो जाए. ये जो एल्गोरिथम आपको कंट्रोल कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, आपके ब्रेन को ऑटो पे डाल देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब 1.5 घंटा गुजर गया आधे घंटे के बजाय, एंड उससे आपकी नींद कम हुई. सुबह जो आपने सोचा था एक्सरसाइज करनी है वो नहीं, क्योंकि अब आप लेट उठेंगे और उसके बाद ये कंटिन्यूसली एक चेन रिएक्शन है. आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, फिर आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होगा, फिर आप जॉब पे थोड़ा सा लेट जाएंगे और जॉब पे जो चीज़ें करनी थी, खाली दिमाग के साथ सोचनी थी या बिजनेस में, ऑफिस में जाके सोचनी थी, वो हो गई काम, एंड सारा दिन कम प्रोडक्टिव रहा, एंड ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहा, एंड इन बिटवीन और कई चीज़ें डिसिप्लिन की शामिल हो गई. एंड दिस इज वाई ये आज के ज़माने में कहते हैं कि पीपल हैव सो मच नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दे हैव द मोटिवेशन फॉर डे और टू और थ्री और अ वीक. लेकिन जैसे वो जिम में जाते हैं ना नए साल के रेजोल्यूशन के साथ, पहली बात तो ये है कि जो लोग रेजोल्यूशन का वेट करते हैं कोई काम करने के लिए, वो पहले फेल हो चुके होते हैं. यानी उन्होंने 11.5 महीने कुछ नहीं किया और 15 दिन एक रेजोल्यूशन बनाई, गारंटीड पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते उन्होंने जिम वापस नहीं जाना, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं वो 11.5 महीने रेजोल्यूशन वगैरह का वेट ही नहीं करते. डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस, मोटिवेशन नेवर कैन. प्रोग्राम है संगीत, मैं हूं शान.
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा. कीमतां कट ते क्वालिटी A1.
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां. हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक.
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7770
1: 80 एवेन्यू, तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी.
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशन का सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222.
3: Sangeet Studio, Sangeet Studio. Weekends with never be same. Sit back, relax and join Sangeet Studio, a prime relaxing time show. Sangeet Studio with Sean, with Sean.
0: And iske saath hi aapko ek Punjabi gaane ki taraf leke chalta hoon. Chann chade rehnde. Aur ye request hai hamare ek listener ki jo Uber chala rahe hain. नाम नहीं बताना चाहते. एंजॉय कीजिए.

वेलकम बैक 94.7 FM पर प्रोग्राम है संगीत. इस वीक का जो कहना चाहिए टॉपिक ऑफ द वीक है ना आज के प्रोग्राम का, वो मेरा ख्याल और कोई हो नहीं सकता अदर देन WestJet की जो फ्लाइट अटेंडेंट्स की स्ट्राइक है. कनाडा में ये जो 3-4 बड़ी स्ट्राइक्स हैं ना, रेलवे की, कनाडा पोस्ट की, एयर कनाडा की और WestJet की, ये चार ऐसी स्ट्राइक हैं कि जो पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं. हर 2-3 साल के बाद स्ट्राइक की धमकी आती है, फिर स्ट्राइक हो जाती है, फिर लोग परेशान हो जाते हैं, फिर मेल नहीं जाते, कुरियर को यूज़ करते हैं, ट्रेनों के इश्यूज. अच्छा, ट्रेनों में बिजनेस का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एयर कनाडा है, WestJet है और कनाडा पोस्ट है, उससे ऑलमोस्ट एवरी कनेडियन इफेक्ट होता है. अब ये जो नई स्ट्राइक, दो बड़ी एयरलाइंस हैं कनाडा की, WestJet और एयर कनाडा. अब WestJet की जो स्ट्राइक है उसकी हैं क्या डिटेल्स, यानी आम आदमी को जानना उसमें क्या जरूरी है. July 30th को, यानी कल, द यूनियन इशूड 72 आवर्स स्ट्राइक नोटिस. ये लॉ था, ये रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलेशन है, जरूरत है इसकी कि 72 आवर्स की स्ट्राइक का नोटिस दें. तो उन्होंने July 30th को नोटिस दे दिया. इसका मतलब यह है कि August 2nd को 2026 को, यानी दो दिन बाद, मंडे को, द अर्लीस्ट लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो शुरू हो जाएगा August 2nd को. अब August 2nd मंडे है,